0: देख तमने में दे शुरू अन मिदन अन आज मी दला लाफिया तो मज मन मिदन गे रुदु वन दे सन्ना बोज म दला लाफिया सबा कति में दसन ने दसो वन सन ने नसना वन
1: दुरे दुरे